केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेक्या।

वन मगनो यकशाके अय प्रमाना मखना नमो श्याम तवते यन हकमो ओ विन मक्ष वन लव हेते हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय हय